अपनी हता के परावार आप ग्रह साक्ति फिरापता मार एक ना गली जंजीरियां एक त्रिचट बस्यार आप ग्रह करे आपको कैसों करी पकार नानक करना जिनकिया बैठे सी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कन्हर बूंद बसर मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछुड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ हर नाम मंत्र दृढ़ाए दा कटे होमै रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग हर नाम मंत्र दृढ़ाए दा कटे होमै रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग सुख टल गुर सेविया एहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह
ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂ ਦੈਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂ ਦੈਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ

सोरठ महला तीजा। हर जियो तुद नो सदा साला ही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा। एक पल खिन विसरह तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूड़ मुगद सदा से पाई, गुर के शब्द प्रगासा।

हम शब्द मुए शब्द मार जीवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहया समाई। शब्द न जाने है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम्मे वारो वारा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने, मन मुख मुगद गुबारा। आपे कर विख मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै पाई, करता करे सो होई। नानक नाम वस्या मन अंतर पाई, अवर न दूजा कोई। आपे कर विखै मार्ग लाए पाई, तिस बिन अवर न कोई। जो तुर लिखिया सो कोई न मिटे

कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुर राज अब चले अटल आदि पुरख

0: हाँ मैं बिन बता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
1: पौड़ी वड्डी हो वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन कर दवा जिया अंदर जियो सब किसी जान ला सब

0: पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर
1: जिनी नाम ते आया गए मस

पौड़ी बढ़ी वडा अपार तेरा मर्तुबा रंग प्रंग अनेक न जापन करतुबा जिया अंदर जियो सब किस जानला सब किस तेरे वस तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जतकता नानक।

रंग प्रांगन एक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा कर पला तेरे खर न दुबदाई।

0: जिया अंदर जियो सब किश जान ला, सब किश तेरे बस तेरा कर भला, तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता, नानक दसन दास तुदे आगे बिनवता सलो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुदाई दाया खेलै सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर।

रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हरे को पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिनवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हरानक अनेक अनंता। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमृत सास जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ा वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करहे सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें ते नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तूंदरी आओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाना हर गुण सद ही आख बखाना। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जाण सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ पई ले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबी अले। मान एकना चेतस मूड मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।
ना हों जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिंतो नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप

शरण परे की राख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरण मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट स्वै तुम काहो आप हाद मुहे बचाओ। सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर इच्छा निज कर द करिय सा बैरन को आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहूं तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाद मुझे वरिय मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जो करिहो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बापतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह पद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कबहूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते वदन सृष्ट सब धारै आप आपनी बूझो चारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अरालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सागरी सृष्ट दिखाए अजंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करोरण काता।
जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तै है ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे वारा। जिन हर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंतरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर

विवेक दान विसह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का

अब हम चले ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखहो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखहो लाज मुरार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखहो लाज मरार। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रा मेरा। एहे बिनंती सुन प्रा मेरे, देहे नाम कर अपने चेरे। अपनी सरन राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किन्ने बिरले जाते। सुनो बिनो प्रा मेरे मीता, चरण कमल वस है मेरे चीता। नानक एक करै अरदास, बिसर नाही पूर्ण गुण तास। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। हों आया दूर हों चल कै, मैं तकी तौ सरनाए जियो। मैं आसा रखी चित मैं,

हम मूढ़ मुग्ध सदा से पाई, गुर के शब्द प्रगासा। हर जियो तुदनो सदा सा लाही प्यारे, जिचर कट अंतर है सासा। एक पाल खिन विसर है तू स्वामी, जानो बरस पचासा। हम मूढ़ मुग्ध सदा से पाई, गुर के शब्द प्रगासा। हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद बिट हो वारिया सद ही।

हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई, शब्द ही मुक्त पाई। शब्द मन तन निर्मल होआ, हर वसिया मन आई। शब्द गुर दाता जित मन राता, हर स्यों रहया समाई। शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा। बिस्टा के कीड़े बिस्टा माहे समाने, मन मुख मुगद गुबारा। आपे कर वेख मार्ग लाए पाई, तिस बिन

पौड़ी वढ़ी वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वास।

हम अव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सत द्वारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई।

सुकहटल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसम दी

सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, सतगुर मिले उलटी पाई पाई, जीवत मर ताबूज पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत

गौर सब दी मिलाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वरै आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वरै सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन भगत वछल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख चित्त है। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम आओ खद दिया एक लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए विचारो तित कर गावहु सोहिला सिवरे हो सृजनहारो। तुम गावहो मेरे निरभाओ का सोहिला हाँ वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन सुमार। संबत साह लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असी सड़िया होवै साहिब स्यों मेल। कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला शै कर शै गुर शै उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ। विसोए चसया घड़िया पहरा थित्ती वारी माहो होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल्या नलो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत भेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नन एक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। साव मह जोत जोत है सोए तिसद चानण सब मह चानण होए। गौर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सुआरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देहे नानक सारंग कौ होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कामे क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे।
पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हार लेव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हार रस साधना जानिया तन अंतर होमें कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुभ है दुख पावै जमकाल सह है सिर डंडा हे हार जान हार हार नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौरी पूर्वी महला पंजवा कराऊं बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला औद घट दिन सरणारे मन गोर मेल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पिया वै एहो रस अकथ कथा तन जानी जा कौ आए सोई बेहज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पावहु सुख सहजे बहु

संत जना मिलहर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

0: विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेट विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखै हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरा भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत बौसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत श्री विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत

मुसलमाना सिफत सरयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू साला ही साला दर्शन रूपा पार, तीर्थ ना महर चा पूजा अग्रवास।

जल दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी झड़ झड़ पवे अंगियार, नानक जिन करता है कारण किया, सो जाने करतार पौड़ी।

लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु एकिया देही दुख दिया सौ वे जिया अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अहनस करे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता पग पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरछाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिना में किस्ता न पाई रहे वाणी बनी मसानी अंदर जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी पग

सूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जग मगा तेज भू मंडल छायो पारस परस

सुखहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाहद शाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशाहद शाहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सतना

प्रभ अपना सदा त्याया, गुर अपने बलहारी, जिन पूरन पैज सवारी, मन चिंदिया फल पाया, प्रभ अपना सदा त्याया, संतह तिस बिन अवर न कोई, करण कारण प्रभ सोई, रहा प्रभ अपने वर दीने, सगल जीव वस कीने, जन

0: लगे डूबे से वंजारिया सतगुर है वह कावर लेके विचारिया कर कृपा पार उतारिया
1: कर कृपा पार उतारिया जिनी ऐसा हरना।

0: आए शीश नवाए क्या थी है जारी दे कुछ दे जाए महला पहला
1: पर पुस्तक संध्या बादंग सेल पूछ बगल समादंग मुख झूठ बे भूकन सारंग

बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जापिया तपिया

सच्चा सहम एक तुझिन सचो सच वरताया, जिस तू देत मिले सच तिनी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है।

0: छोड़ीले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास श्री वगैन तिनगल ताग तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद उन्ना पे आवे ओई साद। उड़ी राज कुड़ावा पार कुड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर। नानक कूड़ रहे परपूर मत्थे टिका तेर तोती का खाई हाथ छुरी जग कसाई। नील वस्त्र पैर हुआ प्राण मिले स्थान ले पूजा प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देख।